ना कुछ भी पहले ही दे दू वार्निंग, पार्टी चलेगी टिल सिक्स इन द मॉर्निंग, जी भर के ना चले बेबी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल, आंटी पुलिस बुला लेगी तो या

जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।

सुर टंका माया श्रेष्ठ सुमी श्रेष्ठ र कविता सेन्चुरी को सुमधुर आवाज में शब्द संगीत गावा फिंजु पाखरिन इस तीज में केवल नाचने रमाउने मात्र होइन नारी का कथा र भावनालाई पनि महसुस गरौं।